नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 28 सितंबर 2026, दिन सोमवार, अश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीय 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर।

प्रभु प्रेमी का मतलब ये नहीं है कि कौन कितने पाठ कर लेता है, कितनी यात्राएं कर लेता है। अल्लाह गॉड अथवा ईश्वर के नाम के मन के कितनी बार बिना रुके फेर लेता है, ये भक्त होने की पहचान नहीं है। प्रभु प्रेमी तो उसी को कहा जाएगा जो प्रभु के अस्तित्व में यकीन रखेगा और इसके बंधनों से प्यार करेगा, बिना उसकी जाति मजहब भाषा वेशभूषा का ध्यान किए।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
3: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी है अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
4: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए बातचीत डॉक्टर आराधना जिंदल सहज योग प्रैक्टिशनर के साथ। आपकी बातचीत का विषय है सहज योग और मेडिटेशन। आज के आमंत्रित मेहमान के साथ बात करेंगे भारत सोपोरी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। और आज हम एक अद्वितीय सफर पर निकलेंगे जहां हम चर्चा करेंगे सहज योग के बारे में। आज हमारे साथ हैं श्रीमती डॉक्टर आराधना जिंदल जी, जो एक अनुभवी सहज योग विशेषज्ञ के साथ साथ एक आर्किटेक्ट और शिक्षा विद्वान भी है। उनके अनुभव और ज्ञान ने कई लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। आइए करते हैं स्वागत सहज योग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर आर्किटेक्ट व शिक्षा विद्वान डॉक्टर आराधना जिंदल जी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
5: FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: आपका स्वागत डॉक्टर आराधना जिंदल जी। सबसे पहले हमें अपने सफर के बारे में बताएं, परिचय के साथ आप सहज योग में कैसे आई और इसके साथ जुड़ी।
5: मेरा सहज योग में आना एक इत्तफाक मात्र ही था। मैं जब छोटी थी तो मैं परमात्मा को खोज रही थी और परमात्मा से मेरा, मुझे लगता है कि शायद बचपन से एक अंदर से जुड़ाव था। मेरे माता पिता मुझे मंदिर लेके जाते थे। एक प्रश्न मेरे अंदर बचपन से ही बना हुआ था कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें खोज रही थी।

0: जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी खोज बढ़ती गई, अंदर की खोज। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद प्रभु की कृपा से मैं अम्बे माँ के ही घर यानी अम्बाला आई, ये भी एक इत्तफाक था
1: जी।
0: मेरे लिए यहाँ आना शादी के बाद, तो मेरी ये खोज बहुत बढ़ गई। आपने ये देखा होगा कि लोग ना एक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, जब वो थोड़े से उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं या एक रिटायरमेंट की एज की तरफ जाते हैं, तो वे लोग आध्यात्मिकता की बात करते हैं। लेकिन मैं बहुत छोटी थी और मैं आध्यात्मिकता के सफर पर चल पड़ी थी खोज में। इस खोज के तहत मैं बहुत सारी जगह गई, बहुत सारे गुरुओं के पास भटकी। तो 2002 की बात है, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे और 26 जनवरी उस दिन छुट्टी थी। मैं सेक्टर 1 में रहती हूँ, पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। तो हमारे कॉलोनी में सब जगह पोल्स पर एक कुंडलनी जागृति सहज योग ध्यान के पोस्टर्स लगे हुए थे और उसमें माँ की फोटो बनी हुई थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, मेरा इनके साथ जन्मों जन्मों का नाता है। तो मैं बहुत, मुझे आकर्षण हुआ। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुंडलनी शक्ति, जो लिखा था उसमें शब्द की कुंडलनी जागरण, तो कुंडलनी से मेरा कभी भी परिचय नहीं था इस शब्द से, लेकिन मैं कुंडलनी के बारे में सब कुछ जानती थी कि एक शक्ति है जो हमारे अंदर होती है और अगर किसी के जागृत हो जाए तो वो बंदा शक्तिमान हो जाता है, मेरे को इतना पता था। इतने सालों की यात्रा के बाद वो दिन था कि जिस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो विचार हैं वो थम गए हैं। मैं उस प्रोग्राम में गई, जब सहज योग ध्यान के प्रोग्राम में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगले दिन फॉलोअप में बहुत अच्छा लगा, तो मेरी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन मैं दिमाग से साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई भी चीज़ जब पाती हूँ ना तो मैं उसकी ना खोज मेरे अंदर अंदर शुरू हो जाती है कि जो चीज़ मैंने अगर पाई है, खोजी है, क्या यही रास्ता है क्या परमात्मा को पाने का। सबसे बड़ी बात ये हुई कि सहज योग में आने के बाद मेरे दिमाग में जितने प्रश्न थे उनके मुझे अपने आप ही कई प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो गए अपनी मेडिटेशन में। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जब मैं अपने ही सहज योग में जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे बात करती थी, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे वहां से मिलने शुरू हो गए। और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो सहज योग, जो इनकी फाउंडर हैं श्रीमाता जी निर्मला देवी, उनके जब मैं लेक्चर सुनती थी, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे वहाँ से मिलने शुरू हो गए। मुझे लगा यार मेरा दिमाग तो शांत हो रहा है, जो दिमाग इतना ज़्यादा लॉजिकल था वो दिमाग ना शांत होना शुरू हो गया मेरा। जैसे जैसे दिमाग में शांति आ रही थी वैसे वैसे मैं ठहराव आ रहा था, मेरे जीवन में एक बैलेंस आ रहा था। क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं यात्रा पे आगे बढ़ती गई, बहुत सारे लोग इस यात्रा में मेरे साथ रहे, उन लोगों ने मेरा सहयोग करा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। जितनी परेशानी आ रही थी कहीं ना कहीं मैं इस आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से बहुत ज्यादा खुद को संतुलित रख पा रही थी।
1: जी डॉक्टर आराधना जिंदल जी, आपने जो जानकारी दे दी हमारे श्रोताओं तक जो पहुँचाई, आपने जिन प्रश्नों के उत्तर पाए आपने अपनी जिंदगी को सहज कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि आज हम आपसे प्रश्न करें और जितने भी हमारे श्रोता हैं वो भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही संभालें और मेडिटेशन के माध्यम से या आपके जो उत्तर आएंगे उनके माध्यम से अगर हम अम्बाला की जनता को और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं अगर हम उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता ले आए तो हम प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सहज योग का अभ्यास करने का आपके लिए क्या महत्व है, कृपया विस्तार से बताएं।
0: देखिए जैसा मैंने आपको बताया है कि सहज योग का अभ्यास हमारे जीवन में हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, हमें संतुलन में रहना सिखाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज की भागदौड़ की जिंदगी में। आप जानते ही हैं कि हम आज एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर नया दिन एक नया आविष्कार, एक नई डिस्कवरी, एक नई परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं। और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक टेंशन में, स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, एक अपने एक जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, परिवार का, स्वास्थ्य का, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना मन और बुद्धि की, जब हम बात करते हैं मानसिक और शारीरिक, क्योंकि मन बुद्धि मानसिक शारीरिक ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से कारपेट की तरह वोवन है, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं तो जब हम अंदर से ही स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम अपना 100% कभी भी कहीं भी नहीं दे सकते, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारी जॉब बिजनेस हो, हम हर जगह अनसेटिस्फाइड से अनबैलेंस से ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सहज योग ध्यान है ये जब हमें वर्तमान में रखता है ध्यान के माध्यम से, तो हम परिवार के बीच में बैठे हैं तो भी हम संतुलन में हैं, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिएक्शंस ही हमारे संबंध बिगाड़ती हैं परिवार में, रिएक्शंस ही हमें बाहर के लोगों के साथ हमारे एक डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं, और रिएक्शंस ही कहीं ना कहीं हम अपने जॉब पे करते हैं तो हमारे और हमारे बॉस के हमारे कलीग्स के संबंधों को खराब करती हैं। रिएक्शंस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हर जगह एक जिसे कहते हैं अनबैलेंस क्रिएट करती है। तो जैसे जैसे हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, बैलेंस में रहना सीख जाते हैं, तो हमारी रिएक्शंस कम होने लगती हैं, हमारी प्रेम बढ़ने लगता है लोगों के साथ, हमारा एक समन्वय बढ़ने लगता है लोगों के साथ, लोग हमें प्यार करने लगते हैं, हम लोगों को प्यार करने लगते हैं, और ऐसे क्या हो जाता है एक हर जगह हार्मनी क्रिएट होने लग जाती है, एक वातावरण एक घर में परिवार में एक ऑफिस के प्लेस में बिजनेस प्लेस पर। तो ये एक सहज योग का एक बहुत बड़ा फायदा है।
1: क्या आप बता सकती हैं कि सहज योग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ता है जी। देखिए अगर हम सहज योग को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सहज योग है क्या, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, मैं तभी दे पाऊंगी जब तक मैं आपके श्रोताओं को ये बताऊं कि सहज योग है क्या। सहज योग तीन शब्द से मिलकर बना है, सहजा यानी पहला शब्द है सहज, तो सहज बना है सह और जा, हमारे सह मीन्स साथ, जो मीन्स जन्मा हुआ, क्या चीज जन्मी हुई है हमारे साथ, और योग माने मिलन यानी जोड़, है ना, हम एक मैथमेटिक्स में योग की बात करते हैं ना, तो ये मिलन, तो क्या चीज हमारे साथ जन्मी हुई है जिसका योग होना है। तो इसी में आगे मैं ऐड करना चाहूंगी कुंडलनी शक्ति, जिस शक्ति की बात मैंने पीछे करी आपसे कि जिस शक्ति की मैं खुद खोज कर रही थी, ये शक्ति हमारे साथ जन्म से ही है, यानी कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का होता है तो ये शक्ति बच्चे के तालु भाग को हिट करती है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने दशम द्वार बोला है, ये हिट करती है और बच्चे के मस्तिष्क के अंदर एक प्रिज्म के आकार की आकृति होती है। तो जब ये शक्ति ऊपर से हिट करती है तो ये तीन क्या है वर्टिकल चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि लेफ्ट चैनल राइट चैनल और एक सेंटर चैनल। हमारे जो लेफ्ट चैनल होता है ये हमारे भूतकाल का चैनल होता है, ये हमारी इच्छा का चैनल भी होता है, यानी कि हम कोई भी कार्य करने के लिए इच्छा करते हैं वो हमारी इसी चैनल से आती है, और इस चैनल को हम नाड़ी भी कह सकते हैं हिंदी में, और ये नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी होती है, ये आयुर्वेद में अगर आप अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा तो ये ज्ञान ऑलरेडी है। जो राइट वाला चैनल होता है हमारा ये भविष्य का चैनल होता है, और ये जो चैनल होता है ये हमारा क्रिया का चैनल होता है, यानी क्रिया शक्ति का चैनल होता है, यानी हमने लेफ्ट चैनल से इच्छा करी और राइट चैनल से हमने कोई कार्य किया, और ये जो नाड़ी होती है हमारी सूर्य नाड़ी होती है यानी गर्म नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी है ठंडी नाड़ी। एक आम आदमी के अंदर इन दोनों नाड़ियों का एक बैलेंस होना चाहिए जो नहीं होता। ये जो तीन चैनल वो शक्ति बनाती है, और सेंटर चैनल ये हमारा वर्तमान का चैनल होता है, और ये जो नाड़ी होती है ये हमारे आध्यात्मिक उत्थान की भी नाड़ी होती है, यानी हमारी जब ये शक्ति जो हमारी सुप्तावस्था में पड़ी होती है इसकी जब जागृति होती है इसी चैनल के माध्यम से हमारे ऊपर हमारे दशम द्वार पे आती है। तो ये जो जितना भी ज्ञान था जो हमारा वैदिक काल था उसमें ये ज्ञान सबको पता था और इसका अनुभव भी सबको था। उसके बाद 7 चक्रों का निर्माण करती है शक्ति, और इन सारे नाड़ी तंत्र को बनाने के बाद ये बहुत इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म नाड़ी तंत्र, ये नाड़ी तंत्र को बनाने के बाद ये शक्ति बच्चे की रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे टेल बोन होती है, उससे ऊपर एक ट्रायंगुलर बोन होती है जिसका नाम होता है सेक्रम बोन। ग्रीक्स ने इसको सेक्रम इसलिए बोला कि पवित्र अस्थि है
1: जी।
0: ये हड्डी में जाके ये शक्ति 3.5 कुंडल में जाके बैठ जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने महसूस किया होगा कि बच्चे का जो तालु भाग है सर का ऊपरी हिस्सा जिसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं
1: जी।
0: आपने महसूस करा है
1: जी।
0: कभी हाथ रखा है उस पे छोटे बच्चे के?
1: हाँ हाँ।
0: वो बहुत नरम होता है,
1: डेलिकेट होता है,
0: और आपको ये भी पता होगा कि पुराने जमाने में स्त्रियां ना उस बच्चे के उस जगह पे हाथ नहीं रखने देती थी किसी को,
1: ठीक है,
0: उन्हें पता था कि कोई भी राक्षसी शक्ति अगर बच्चे के हाथ रख दे तो बच्चे का सारा सिस्टम वो खराब कर देगी अंदर का।
1: ठीक है,
0: ठीक है? तो वो बड़ा पवित्र स्थान है, तो ये शक्ति बच्चे के भ्रमरंध्र पे ही रहती है जब बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, और यही कारण है कि बच्चा मस्त होता है अपनी दुनिया में। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, भूख लगी तो रो दिया और भूख शांत होगी तो सो गया। यह खेलता रहा। अब क्या होता है कि जो हमारी तीन नाड़ियां हैं, ये तीन नाड़ियां जो हमारा एक आज्ञा चक्र होता है, यानी कि जिसको शिव जी का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, वहां पे जाके ये दोनों नाड़ियां क्रॉस करती हैं, यानी कि हमारा लेफ्ट चैनल और राइट चैनल। तो लेफ्ट चैनल क्रॉस करके राइट ब्रेन में चला जाता है और राइट चैनल क्रॉस करके लेफ्ट ब्रेन में चला जाता है, और सेंट्रल चैनल बिल्कुल उसको क्रॉस करके सीधा ही हमारे भ्रमरंध्र तक जाता है। तो देखिए कि हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे हमारी तीन नाड़ियां मिलती हैं, और आज्ञा चक्र हमारा फोरहेड पे होता है, यानी माथे पे होता है। ये वही स्थान है हमारे विचारों का स्थान, यानी हमारे जो विचार बनते हैं ना, वो यही बनते हैं हमारे मस्तक में।
1: मेरा जो अगला प्रश्न था उसका उत्तर आपने पहले दिया था। मेरा प्रश्न था कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, वो आपने समझा दिया। अब हम इस पहले भाग में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसको हम अपने स्वास्थ्य के साथ कैसे जोड़ेंगे।
0: बिल्कुल, तो मैं उसी प्रश्न पर आती हूँ। तो ये धीरे धीरे कुंडलनी ना क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा ना 12 साल का होता है ना, ये तब तक ये उसका भ्रमरंध्र बंद हो जाता है, कैल्सीफाई हो जाता है, उस पर कैल्शियम जम जाता है और ये शक्ति नीचे जाके बैठ जाती है और सो जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। मैंने आपसे बात की थी श्री माता जी निमला देवी की, जिन्होंने सहजयोग की स्थापना की 5 मई 1970 में। तो जब हम हाथ खोल के बैठते हैं और हम मांगते हैं कि माँ मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत कीजिए, तो हमारी शक्ति ये जागृत होती है और हमारे 6 चक्रों को भेद कर हमारा भ्रमरंध्र खोल देती है, यानी दशम द्वार खोल देती है, हमारा संबंध परमात्मा से करा देती है, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यानी इसके बाद हमारा क्या होता है, उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम जब मेडिटेशन करते हैं, सवेरे शाम मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे धीरे हमारे जो चक्र, जो हमारी कहते हैं ना हमारी खुद की रोज दिनचर्या से हमारे बाधित हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो चक्र और हमारी नाड़ियां जो उसमें ब्लॉक्स हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और जैसे जैसे चक्र और नाड़ियां खुलने लगती हैं, हमारे अंदर संतुलन आने लगता है, हमारा शरीर ठीक होने लगता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमारा शरीर ठीक होने लगता है। और देखिए जैसे जैसे हमारा शरीर ठीक होगा, धीरे धीरे क्या, हमारा मन भी अच्छा होने लगता है। हमारा मन से बना है मानसिक, तो मन हमारी लेफ्ट नाड़ी से बनता है, राइट नाड़ी से शरीर, मन और शरीर का आपस में लय स्थापित हो जाती है जब कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है, हमारी तीनों नाड़ियों को ले जाके संतुलित करती है, हमारे विचारों को खींच लेती है, विचारों को खींच के हमारे सहस्त्रार से बाहर निकलती है। तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, और धीरे धीरे हम क्या होता है, एक ब्लिस फील करते हैं। हम एक परिवार में बैठे हैं, हम शांत हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, हम वर्क प्लेस पे हैं, शांति से काम कर रहे हैं। जैसे एक देखिए समुंदर है, इसकी तुलना आप समुंदर से करिए, गहरा, जितना समुंदर गहरा होगा उसमें उतनी कम रिपल्स या बिल्कुल ना के बराबर रिपल्स है। रिपल्स कहाँ होती है, जो तट पर होता है समुंदर, वो ही ज्यादा हिलता है, आगे और पीछे जाता है, है ना, वो शैलो होता है जो, फिर हम अपनी गहराई पाने लग जाते हैं रेगुलर ध्यान से।
1: आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया। हालांकि मेडिटेशन के बारे में हम आपसे और प्रश्न करेंगे, फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपके एक मनपसंद गीत सुनाना चाहेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या, जितना आप अपने कार्य में ध्यान देते हैं, क्या उतना ही ध्यान आप संगीत में भी देते हैं?
0: देखिए मेरे अनुसार ना संगीत ना हमारे आत्मा की एक प्योरिफिकेशन है, आत्मा की आवाज है, और हमारे 7 चक्रों पे हमारे 7 संगीत के सुर होते हैं
1: जी।
0: सारे गामा पाधानी, 7 चक्र 7 संगीत, सरगम के 7 सुर। संगीत मेरी आत्मा में बसा है और मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये मेरे हार्ट को मेल्ट कर दे, एक सोलफुल म्यूजिक।
1: तो कौन सा आप गाना इस समय हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे अपने मन पसंद का?
0: मेरा जो मन पसंद गीत है मधुबन खुशबू देता है।
1: तो क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा गुनगुनाएंगे भी?
0: जरूर,
1: प्लीज।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना था आपका जो आपने श्रोताओं को सुनाया, और आपकी मधुर आवाज में आपने हमारी श्रोताओं को भी मंत्रमुग्ध किया। हम आगे चलते हैं। डॉक्टर आराधना जिंदल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के सहज योग को अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है।
1: जी, बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपका, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, सवेरे शाम हमको मिनिमम 5 मिनट ध्यान करना है
0: जी,
1: बस इतना यही करना है। और जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे अंदर शांति स्थापित होगी, संतुलन आएगा, हमारे चक्र साफ होंगे, हमारी नाड़ियों के ब्लॉकेजेस खुलेंगे और उतना ज्यादा हम वर्तमान में आते जाएंगे।
0: तो हमारे स्वास्थ्य के साथ ये सारी चीजें जो आपने प्रक्रियाएं बोली, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है। अगर हम मानसिक रूप से कोई स्ट्रेस नहीं है, तो अगर ये चीजें हमारे बॉडी से दूर हो जाएंगे तो हम अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं।
1: जी,
0: क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि महिलाओं के संदर्भ में कैसे वो अपने तनाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारा तनाव पुरुषों से ज्यादा होता है, क्योंकि कार्य ऐसे हैं और ना उनकी कोई छुट्टी होती है
1: जी,
0: वो 24 घंटे काम करती हैं और पूरे 365 दिन काम करती हैं।
1: देखिए, इसका फिर से वही उत्तर है मेरा, महिलाएं शक्ति हैं
0: जी।
1: और अभी हमने बात करी कुंडलनी शक्ति की
0: जी।
1: कुंडलनी शक्ति परमात्मा की फेमिनिन पावर है
0: जी।
1: तो जब महिला जो खुद एक शक्ति है, जब उसके अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी, तो अब ये बताइए क्या होगा
0: जी,
1: बहुत मिरेकल्स होंगे ना।
0: यस।
1: और अपनी शक्ति का उपयोग करके वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है, शांत रह सकती है। सबसे पहले शांत रहेगी तो घर में शांति आएगी,
0: समाज में भी बड़ी शांति,
1: समाज में शांति आएगी। अगर वो वर्किंग है तो अपने वर्किंग प्लेस पर शांत रहेगी
0: जी,
1: है ना। तो ये इसका तो एक बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं के लिए, तो एक मैं आप कहूंगी कि एक बूंद है। अगर वो सवेरे शाम सिर्फ 5 मिनट सवेरे और 5 मिनट ध्यान करे, सिर्फ इतना करने मात्र से ही उनके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे।
0: तो कृपया आप ये बताएं कि किस तरीके से इसको शुरू किया जा सकता है, क्योंकि आप सहज योग प्रैक्टिशनर हैं, तो किस तरीके से हम उनको सरल शब्दों में ये बताएं कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद भी वो 5 मिनट उस मेडिटेशन के लिए दे सकते हैं।
1: देखिए, योग के 3 चरण होते हैं जिसमें हम कहते हैं, जिससे कम्प्लीशन होता है। पहला चरण होता है पाना
0: जी,
1: दूसरा जमना, तीसरा बांटना। पहला पाने का मतलब है कि पहला चरण है शक्ति की जागृति। कहीं भी हमारे रेगुलर पब्लिक प्रोग्राम्स होते रहते हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं मदर के, और हमारे नजदीक कोई भी सहयोग ध्यान केंद्र है वहां पर जाएं और अपनी शक्ति की जागृति करें। ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है, 10 मिनट का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद हमारी जब शक्ति जागृत हो जाएगी, उसके बाद सवेरे शाम ध्यान करना है बस
0: जी, जी।
1: और हफ्ते में एक बार अपने नजदीकी ध्यान केंद्र में जाना है, क्योंकि सहज योग 150 कंट्री में फैला हुआ है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि इंडिया के तकरीबन हर शहर में इसके ध्यान केंद्र है।
0: यानी कि अगर हम YouTube पे सर्च करना चाहें तो हमें सहज योग सर्च करना है तो हमें पूरी जानकारी वहां से मिलती है।
1: गूगल करें आप और उसमें गूगल में लिख दें सहज योग ध्यान केंद्र नियर मी,
0: तो सारी
1: तो आपको मिल जाएंगे जी।
0: क्या सहज योग हमें सकारात्मक बना सकता है स्पिरिचुअली और इमोशनली?
1: बिल्कुल। सकारात्मक मीन्स जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमेशा हर इंसान के अंदर होती है, दोनों चीजों की मात्रा। कईयों के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है, कईयों के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है, हमारे चक्रों और नाड़ियों को साफ करती है, हमारे चक्र जो स्वाभाविक रूप में क्लॉकवाइज घूमते हैं, उनकी गति सुचारू रूप से चलने लगती है। और जैसे जैसे उनकी गति ठीक होने लगती है, क्योंकि हर चक्र हमारे शरीर के अंगों को, एक पर्टिकुलर अंगों को देख रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं नाभि चक्र, जो हमारा 3rd चक्र है नीचे से, हमारा नाभि चक्र हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स को चलाता है थ्रू प्लेक्सस, है ना, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस होते हैं
0: जी।
1: तो जैसे जैसे हम ये ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारे चक्र साफ होते हैं, हमारे जो चक्र हैं अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंग भी ठीक होने लगते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज मैं मेरी उम्र, मैं 55+ हूँ, और इसके बावजूद मैं एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ, एक मानसिक रूप से भी और एक शारीरिक रूप से भी, और मैं इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होती छोटी छोटी बातों से, और मैं बहुत संतुलित जीवन जीती हूँ।
0: यानी कि एक तरीके से ये अदृश्य जो बदलाव आता है जीवन में, इसके लिए कोई हमें कोई चीज सामने नहीं रखनी है, सिर्फ हमने इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करना है, इस प्रक्रिया में जाना है, तो हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में बदलाव आएगा,
1: बिल्कुल आएगा 100%।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो जैसे आप अपने परिवार में होते, अपने बच्चों के साथ होती हैं, तो जो उनकी मुस्कुराहट होती है, क्या आप उन पर कभी निसार हो जाते हैं?
1: बिल्कुल जी।
0: तो कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार।
0: तो चलिए श्रोताओं, आज हम इस चर्चा में हैं डॉक्टर आराधना जिंदल जी के साथ, और वो सहज योग के बारे में बताती हैं। आइए सुनते हैं इनका एक मनपसंद गीत जो है किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार।
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। जारी है कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आराधना जिंदल जी के साथ, जो एक सहज योग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है। डॉक्टर आराधना जिंदल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हम योग के बारे में जानते हैं, उसके अलग अलग आसन होते हैं, एक तरीका होता है, हम चाहे घर में करें चाहे बाहर करें, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और मैं अपने श्रोताओं को भी ये समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो सहज योग की बात आपने की, उसका क्या तरीका है, क्या उसके भी अलग आसन है, तो कृपया विस्तार में बताएं।
1: बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो इसका मैं ऐसे जवाब देना चाहूंगी, पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में योग के 8 नियम बताए हैं
0: जी,
1: और उसका जो 8वां है वो है समाधि
0: जी।
1: तो जब हम 7 का पालन करते हैं अपने जीवन में, जैसे यम, नियम, ध्यान और प्राणायाम और ये आसन, ना उपवास, ये सब करने के बाद फिर हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, और ये पूरा एक जन्म, क्या कई जन्म लग जाते हैं इसको जागृत होने में
0: जी।
1: लेकिन यहाँ अब कलयुग है ना, कलयुग में क्या है कि पहले हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत कर दी गई
0: जी।
1: इसके बाद अब हमारा ये शरीर साफ होना है, तो हम सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही, इसके लिए हमें कोई आसन नहीं करना। आसन हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलरली माना हमारा एक दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र खराब है
0: जी।
1: अब हमें हर चक्र के लिए, ऐसा नहीं है कि हमने जनरली सारे ही आसन करने हैं, उस चक्र के जो भी अगर आपका आसन चक्र खराब है, तो ध्यान के साथ साथ हम वो आसन कर सकते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में कि जैसे कि मेरे को जुखाम है या बुखार है तो डॉक्टर उसी की ही दवाई देगा, बाकी पूरे शरीर को ठीक करने की दवाई नहीं देगा
0: जी।
1: तो इतना महत्व है। बाकी प्राणायाम, जब हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हमारी कुंडलनी शक्ति हमारी तीनों नाड़ियों को संतुलित करती है, तो तीनों नाड़ियां यानी कि हमारी लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और हमारी राइट नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी और सेंटर नाड़ी, इन तीनों में एक बैलेंस यानी संतुलन आने लगता है, और इससे क्या होता है कि हमारी प्राणों की लय स्थापित होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमें अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है,
0: यानी कि एक मिश्रण है हमारे अच्छे स्वास्थ्य का, कि अगर हम जो योग हम जानते हैं वो करते हैं, और उसके बाद अगर हम सहज योग करते हैं तो उसका माध्यम केवल मेडिटेशन ही है
1: जी,
0: जो हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है
1: जी,
0: हमारी जिंदगी को आसान करता है
1: जी,
0: और हम जो हाइपर एक्टिव होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं, और हम बहुत ही शांत स्वभाव से अपने जीवन को चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए
1: जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, कई बार नींद नहीं आती है, जिस कारण अगले दिन हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्या तरीका होना चाहिए ताकि हमारी नींद भी पूरी हो तो अगले दिन हम अपना 100% दे सकें।
1: ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल है
0: जी।
1: मतलब मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं कि जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, और जो कहता भी है वो भी शायद कहीं ना कहीं ये बात असत्य बोल रहा है। तो जब हम एक बार अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, उसके बाद कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे एक पानी पैर क्रिया होती है, इसको हम फुट सोक कहते हैं। हमारे भारतीय जो हमारा विज्ञान है, ज्ञान जो भी कह सकते हैं, उसमें भी बताया है कि रात को सोने से पहले अगर हम दोनों पैर को अपना पानी में डालें और एक मुट्ठी भर नमक डाल दें उसमें, क्योंकि मुट्ठी जो नमक होता है ना, ये हमारा गुरु तत्व होता है, ये क्या करता है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी बॉडी में नेगेटिविटी होती है पूरे दिन की, वो खींच लेता है, हमारे स्ट्रेस को, हमारे विचारों को खींच लेता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने एक बकेट में इतना पानी लेना है कि जितने हमारे एंकल्स डूब जाएं, थोड़ा सा नमक डाल देना, समुद्री नमक, और अपने दोनों पैरों को सिर्फ 10 मिनट डाल के हमने ध्यान उसी मुद्रा में करना है, उसी स्थिति में करना है। सिर्फ सोने से पहले आप इतना ही कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं सारी सारी रात तारों को, अगर मैं, हम छोटे थे ना तो हम बाहर सोते थे तो तारों को गिनती रहती थी मैं, मुझे याद है,
0: यानी कि आप जागती रहती थी।
1: हाँ, जागती रहती थी ना। तो लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टाइम है, 1 पल में मुझे नींद आती है।
0: बहुत अच्छी बात है, और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न इसलिए था क्योंकि आज के डेट में हर कोई स्ट्रेस से भरा है, और जब हम सोने जाते हैं तो शायद हम अच्छे से नींद नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी पे पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, जिसमें आप एक काबिल और जाने माने आर्किटेक्ट हैं और आप शिक्षा विद्वान हैं, अब मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आपकी दृष्टि में एक अच्छे आर्किटेक्ट में क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि आपने हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाए हैं, तो इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे आर्किटेक्ट में।
1: देखिए, एक अच्छा आर्किटेक्ट ना सबसे पहले क्रिएटिव होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि आर्किटेक्चर का जो बेस है वो क्रिएटिविटी है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देते हैं साइंस ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स
0: जी,
1: ठीक है
0: जी।
1: जब आर्ट और साइंस आपस में कंबाइन हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो एक आर्किटेक्चर बन जाती है
0: जी,
1: ठीक है जी,
0: जी।
1: तो एक आर्किटेक्ट को एक अच्छा क्या क्रिएटिव पर्सन होना चाहिए, उसके अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना वो अच्छा इमेजिन करेगा उतनी अच्छी वो डिजाइंस उसके निकल कर आएंगे। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, मुझे लगता है शायद आपका नेक्स्ट प्रश्न हो तो मैं उसका पहले उत्तर दे देती हूँ कि हमारा जो नीचे से दूसरा चक्र होता है ना जी, स्वाधिष्ठान चक्र, उसका गुण होता है क्रिएटिविटी
0: जी।
1: मेडिटेशन जब हम करने लगते हैं ना, हमारा वो चक्र साफ होने लगता है धीरे धीरे। और जैसे जैसे वो मेडिटेशन के माध्यम से चक्र साफ होने लगेगा, हमारे अंदर स्वाभाविक गुण आने लग जाएगा क्रिएटिविटी का।
0: तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है?
1: क्रिएटिविटी तो बढ़ती है जी, इससे तो सारे गुण आने लगते हैं। सात चक्रों पे हमारे सातों गुण हैं
0: जी।
1: आप ये देखिए, सात चक्रों पे और सारे गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो जब क्रिएटिविटी हमारी आ जाती है, उसके बाद तो बिल्डिंग साइंस ऐड करनी है आपने, उसमें आप अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। और जब आपने क्रिएटिविटी की बात की है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, वो आर्ट भी है, वो म्यूजिक भी है, वो डांस भी है, वो पोएट्री भी है
0: जी।
1: 2002 में मैंने अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया
0: जी।
1: 2003 से मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी।
0: ये मेरा अगला यही मेरा अगला प्रश्न था जी जी।
1: तो मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी और बचपन से ना कुछ एक जो भी संसार में अन्याय हो रहा था तो मेरा वो सब कविताओं के माध्यम से एक्सप्रेस होने लग गया
0: जी।
1: और बहुत अच्छा फील, मतलब अंदर से बहुत लाइट फील होने लग गया। मैंने अपने अंदर का सारा निकाल दिया अपनी कविताओं के माध्यम से। तो
0: हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपकी कविता भी हम सुनेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारा काम किया है, क्या आप कोई विशेष अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा 16 साल का अनुभव है और यहाँ का लोकल MM स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, MM यूनिवर्सिटी साधोपुर अम्बाला। यहाँ पर तकरीबन मैं 10.5 साल प्रिंसिपल रही और मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी रही इतने ही साल। मैं इसके लिए एक अनुभव बताना चाहूंगी। जनरली कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे डिस्टर्ब्ड होते हैं, कुछ अपने घर की घरेलू प्रॉब्लम्स हैं या पढ़ाई का स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। तो वहां मैं क्या करती थी, हमारा 4:30 बजे, जैसे हमारी 5 बजे जब भी छुट्टी होती है, मैं बच्चों को शाम को बुलाती थी कि आप लोग आधा घंटे आइए और हमारे साथ मिलकर ध्यान करिए। बहुत सारे बच्चों का जीवन परिवर्तन हुआ इस मेडिटेशन के द्वारा।
0: यानी कि आपने उनकी काउंसलिंग भी की और उनको राइट ट्रैक भी डाला,
1: बच्चों की क्रिएटिविटी इम्प्रूव हुई, बहुत परिवर्तन आया बच्चों के अंदर। मतलब मैं इस बात से, मेरे अंदर एक जैसे कहते ना गौरव महसूस होता है कि मैंने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था
0: जी,
1: कि बच्चों को ध्यान करवाना, रेगुलर ध्यान करवाना, स्पेशली उन बच्चों को जिनके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी।
0: मैं इस साक्षात्कार के बाद ये कहना चाहूंगा कि आप एक सक्षम महिला है जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में और सहज योग मेडिटेशन के क्षेत्र में आपने अपना पूरा योगदान दिया है। तो हम आपको एक नाम ये दे सकते हैं कि आप एक सक्षम महिला है। पहले हम आपकी कविता पे चलना चाहेंगे। इसके साथ जुड़ा एक प्रश्न मैं करूंगा कि एक कवि या कवित्री, जब कोई भी ख्याल उसके सोते सोते आए, क्या वो उसको उसी समय लिखना चाहिए या वो सुबह जब नींद से उठेंगे तब लिखना चाहिए? उसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपनी कविता सुनाए।
1: बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। जब भी विचार आए तो उसको, मोबाइल तो होता ही है ना हमेशा, उसमें एक फैसिलिटी होती है, ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जनरली मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे जितने विचार आते हैं या तो सैर के दौरान आते हैं या कार चलाते हुए आते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कार साइड में करके ना फटाफट अपना ऑडियो मैसेज में वो उसको विचार को मैं एक करती रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और सोते हुए आया तो अपने साथ में एक नोटबुक और पेन रखती हूँ।
0: यानी कि उस विचार को आप बाईपास नहीं कर सकते, नहीं। अगर आपने उस समय उसको छोड़ दिया तो जरूरी नहीं है कि अगले सुबह जब आप
1: खत्म हो जाता है विचार साथ ही में।
0: कृपया आप अपनी कविता सुनाएं हमारे श्रोताओं को।
1: ये मैं जो कविता सुनाना चाह रही हूँ ये कविता सहज योग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है
0: जी।
1: कि हम किस तरीके से हम वर्तमान में रह सकते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी का सफर
0: जी।
1: जिंदगी के सफर में याद आते गुजरे लम्हे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ दिल को गुदगुदाते, कुछ यादों की मीठी फुहार बरसाते, कुछ दिल के अमिट जख्मों की कड़वी याद दिलाते। इन यादों के सागर में डूबा है जीवन, इन यादों के ताने बाने में उलझा है जीवन। अब ये लास्ट चार लाइनें हैं, इनको ध्यान से सुने श्रोतागण। अगर जी सके तो जी लें बस इस क्षण को, मैं रिपीट करती हूँ, अगर जी सके तो जी लें बस इस पल को, तो बन जाए हर लम्हा जीवन का मधुबन।
0: क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब।
1: ये महिलाओं के लिए संदेश है कि जब आप ये सब कर रही होंगी, आपके बच्चे आपको देखकर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और एक समाज के मजबूत नागरिक बनेंगे जिनका हार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप उन्हें एक अच्छी दिशा दे पाई हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आराधना जिंदल जी। हम आपके द्वारा दी जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करके बहुत खुश है। प्रिय श्रोताओं, आप हमारे साथ बने रहिए और याद रखें कि सहज योग का अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी एकदम सही कर सकता है।
1: सपोरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये एक मौका दिया एक अपनी बात को कहने का, व्यक्त करने का और श्रोताओं तक पहुंचाने का। आप जो आपका रेडियो वितस्ता है, मैं एक ही बात कहूंगी, आप ध्यान करें सवेरे शाम 5-5 मिनट मिनिमम, ठीक है, आप ध्यान करिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप आध्यात्मिक और आप इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे। तो यही मेरा एक संदेश है आप सभी लोगों के लिए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।
0: अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है और हम श्रोताओं को आपके एक और गीत के साथ छोड़ना चाहेंगे। अगले एपिसोड में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: देखिए, मेरा बहुत ही दिल के पास गीत है, पल पल दिल के पास तो रहती है। पहले जब मैं गाती थी या सुनती थी तो किसी और भाव से गाती थी और सुनती थी
0: जी।
1: अब मैं किसी और भाव से
0: जी।
1: ये मेरी अपनी जो शक्ति जो जागृत हुई है, ये तू रहती है, वो हमेशा मेरे साथ है।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर आराधना जिंदल सहजो प्रैक्टिशनर के साथ की गई बातचीत आपने सुनी। कार्यक्रम प्रस्तुत व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी, लेके आया हूं आपके लिए आज एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है भिखारी का दान, जिसको लिखा है सीहोर मध्य प्रदेश से धर्मराज देशराज जी ने। वर्मा जी सुबह सुबह घूमने के लिए अपने बंगले के बाहर निकले ही थे कि उनके दरवाजे के पास आकर एक लंगड़ा भिखारी गाने लगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। फिर उस लंगड़े भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, सोने वालों जागो, घूमने जाओ, पढ़ाई करो, समय नष्ट मत करो, उठो जागो, समय बहुत कीमती है। ये सुनकर वर्मा जी ने उससे 10 का नोट दिया और पूछा, बाबा इस कॉलोनी में पहली बार आए हो, कहां के रहने वाले हो। तब भिखारी बोला, सर जी इसी शहर का निवासी हूँ, बस रोज कॉलोनी बदल बदल कर सुबह जल्द उठने का संदेश देता हूँ। लोग भिखारी समझकर रुपया पैसा दे देते हैं तो लेकर रख लेता हूँ और धर्म कार्य में लगा देता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और वर्मा जी घूमने के लिए निकल गए। 2-3 दिन बाद सुबह सुबह जब वर्मा जी घूमने के लिए निकल ही रहे थे, उनकी ससुराल से कॉल आ गया। जब बातचीत खत्म हुई तब वो अपनी पत्नी से बोले, मैडम आपकी माताजी का संदेश था, आपके पिताजी अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, हमें इसी समय बुलाया है। ये सुनते ही उनकी पत्नी उठ खड़ी हुई। वर्मा जी ने अपना स्कूटर निकाला और 15-20 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वर्मा जी ने अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर देखा, वही लंगड़ा भिखारी उस कॉलोनी में लोगों को जगा रहा है, जोर जोर से गीत गाकर जगाने की प्रेरणा दे रहा है। फिर वर्मा जी ने अपने ससुर का हाल जाना, तत्काल किसी नजदीकी नर्सिंग होम ले चलने का तय हुआ। 2-3 दिन बाद वर्मा जी दिल लगाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने ससुर की देखरेख में लगे रहे। एक दिन नर्सिंग होम के दरवाजे पर किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वर्मा जी ने जाकर वहां

तभी वहाँ एक सूट बूट पहने एक व्यक्ति ने आकर आवाज लगाई, यहाँ का इंचार्ज कौन है? कितने रुपए बाकी हैं इन पर? जरा भी इंसानियत नहीं है? तब एक व्यक्ति ने आकर कहा, साहब जी कैश का इंचार्ज मैं हूँ, छोटा सा कर्मचारी हूँ यहाँ का, मुझे भी हिसाब देना होता है, इन पर पूरे 5,000 रुपए बाकी है। तब आए हुए व्यक्ति ने अपनी जेब से निकालकर 5,000 रुपए दिए और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए और सुनो, ऐसे किसी भी मजबूर को परेशान मत करना, जब भी ऐसी स्थिति आए मुझे बुलाकर रुपया ले लिया करो। फिर उस रोने वाली महिला के कुछ रुपए देकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, वर्मा जी हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहा, भाई आपको मैंने कहीं देखा है, क्या मुझे जानते हो? तब वो व्यक्ति बोला, जी मैं वही भिखारी हूँ जो रोज गली गली घूमकर जल्दी जागने और समय के सदउपयोग का संदेश देता हूँ। ये सुनकर वर्मा जी चौंक पड़े और बोले, लेकिन वो भिखारी तो लंगड़ा था। तब उस व्यक्ति ने अपने पैर में लगे नकली पैर को दिखाकर कहा, सर जी मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी जिसकी मैंने उचित देखभाल नहीं की, अपनी लापरवाही के कारण मुझे अपने पैर के कुछ हिस्से को निकलवाना पड़ा, सर जी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अतः मैंने अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए रोज सुबह मांगता हूँ, अपनी जरूरत पूरी होने के बाद जो बचता है उसे धर्म के काम में लगा देता हूँ। अपने देश में बहुत से धनवान ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए फालतू पड़े हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने को पाप समझते हैं। ये सुनकर वर्मा जी बोले, भाई आपके विचार जानकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आपको नमन करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आपके पास जितनी भी क्षमता है जरूरतमंद की मदद जरूर करें, जितना भी आप कर सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा, किसी और कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। फिर से स्वागत करता हूं आज आपका लघु कथाओं की इस श्रृंखला के बीच में, और हमारी आज की प्रस्तुति है वृद्धाश्रम, और इस प्रस्तुति के रचनाकार हैं सीहोर मध्य प्रदेश के श्री धर्मराज देशराज। तो आइए अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा से सुनिए हमारी आज की प्रस्तुति वृद्ध आश्रम। बाबू राम भरोसे वृद्धाश्रम में अपने पलंग पर लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे से आते हुए एक युवक को देखकर बोले, अहो भाग्य, मेरे बेटे श्रवण कुमार जी आए हैं। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। वो युवक बैठने के बाद बोला, पापा जी मेरा नाम भी भूल गए। अरे मैं आपका राजू हूँ। राम भरोसे बोले, हाँ हाँ बेटे, सचमुच भूल गया था, जैसे तुम लोग मुझे भूल गए हो ना। आज 3 साल बाद मुझे देखने आए हो कि जिंदा हूं या मर गया। मैंने तुमको इतना लायक तो बना ही दिया कि तुमने मुझे नालायक समझ लिया। राजू बोला, पापा आपको कैसे भूल सकता हूं, दरअसल बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, इनमें ही इतना उलझा रहता हूं कि आ ही नहीं पाया। हाँ अब आपको लेने आया हूं। राम भरोसे बोले, क्यों भाई, मेरे बिना कौन सा काम रुका हुआ है। 3 साल पहले तुमने कितनी तरकीब से मुझे यहां छोड़ा था। तुम तो कहते थे रोज मिलने आया करूंगा, ख्याल रखूंगा, लेकिन शक्ल भी नहीं दिखाई। इतने दिन मुझे अब यही अच्छा लगने लगा है, अब कहीं नहीं जाऊंगा। राजू बोला, ठीक है पापा, 1-2 दिनों के लिए ही चलो। अपने घर, अपने पास अपना खेत है, वहां 2 दिन से शहर का नामी बिल्डर बाबू खान आया हुआ है। पूछने पर जवाब नहीं देता, कहता है तेरा बाप आएगा, उसको ही जवाब देंगे। लगता है वो उस स्थान पर कब्जा करना चाहता है। रामपुरस से बोले, बेटा जी रिटायर होने से पहले हम लोग किराए के मकान में रहते थे, बहुत मुसीबत से तुमको पाला पढ़ाया, काम धंधे से लगाया, तुम्हारी शादी की, फिर रिटायर होने के बाद ये मकान जिसमें तुम रहते हो ना, वो और खेत, वो दोनों खरीदे थे, लेकिन तुमने धोखे से मुझे ही घर से निकाल दिया। अब मैंने खेत और मकान दोनों उस बिल्डर को बेच दिए हैं, और वो समस्त रुपए यहां आश्रम को दे दिए। अब बिल्डर बाबू खान बहुत जल्द तुम्हें वहां से बेदखल कर देगा। अब तुम किराए के मकान में रहो और अपने दम पर संपत्ति बनाओ, खूब ऐश करो, अब जाओ यहां से, वरना यहां के व्यवस्थापक गुस्सा होंगे। राजू गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका बेटा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा क्या होगा। बाबूराम भरोसे उठ खड़े हुए और बोले, जाओ भाई जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम भूल गए थे, तुम्हारे बाप ने भी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कितनी तकलीफ उठाई, और अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाओ। राजू ने सिर झुकाया और चला। तब राम भरोसे बोले, हाँ बेटे एक बात और सुनकर जाओ, इस वृद्धाश्रम में हर तरह की सुविधाएं हैं, जब तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकाल दे, तुम भी यहीं आ जाना, मैंने बहुत सा अनुदान दिया है यहाँ, जाओ अब मेरे पास नहीं आना, क्योंकि हमारे संबंधों में भावनाएं नहीं बची हैं, केवल व्यवस्थाएं ही बची हैं। तुमने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हें एक दिन यहीं लाकर छोड़ देगा। बातें तो तुमने बहुत कही थी कि पापा
मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, लेकिन करना तो क्या था, तुमने मेरे लिए इतना किया कि अपनी हर बात से मुकर गए, अपने वायदे से मुकर गए, अपनी हर बात को तुमने बदल दिया, अपने शब्दों को बदल दिया, मुझे बसाने की बजाय यहाँ वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, याद रखना, वक्त सब पर आता है और वक्त सबका आता है। एक दिन तुम भी अपने बच्चों को यही कहोगे।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

हमारा ये सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गई।

छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया, हर पल अपना साया भी पराया होने लगा, जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

बाती ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम

प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक मुकेश पर आधारित है। पेश करेंगी आरजे किरणी।

पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज हम इस कार्यक्रम का एक और अंक लेकर आपके सामने हाजिर है। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज हम बात करेंगे महान गायक मुकेश की, उनके अनमोल गीतों की जो आज भी दिलों को छू जाते हैं। उनके गीत सुनने के बाद पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर उनके गीतों के साथ।

22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद माथुर और चांद्रानी के घर जन्म हुआ मुकेश चंद माथुर का। बड़ी बहन संगीत की शिक्षा ले रही थी और मुकेश बड़े चाव से सुर के खेल में मगन हो गई। मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन मुकेश की दिली ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेता एंट्री मारे। 2 साल तक जब सपनों के शहर मुंबई का रुख किया तो उन्होंने बतौर एक्टर सिंगर ब्रेक मिला। 1941 में आई फिल्म निर्दोष। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था, लेकिन इस आवाज के जादूगर का जादू KL सहगल साहब पर चल गया। मुकेश के गाने को सुन के KL सहगल भी दुविधा में पड़ गए। 40 के दशक में मुकेश का अपना प्लेबैक सिंगिंग स्टाइल था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने दे रही थी और उस दौर में मुकेश की आवाज में सबसे ज्यादा गीत फिल्माए गए दिलीप कुमार पर। 50 का दशक मुकेश को एक नई पहचान दे गया। उन्हें शो में राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। कई इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा है कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। राज कपूर और मुकेश की दोस्ती स्टूडियो तक ही नहीं थी। मुश्किल दौर में राज कपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे।

साठ के दशक में मुकेश का करियर अपने चरम पर था और अब मुकेश ने अपनी गायकी में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। उस वक्त के अभिनेताओं के मुताबिक उनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त और मनोज कुमार के लिए गाए गीत। 70 के दशक का आगाज मुकेश ने जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त हर बड़े स्टार की आवाज बन गए थे मुकेश। साल 1970 में मुकेश की मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर मिला और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अब मुकेश ज्यादातर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, लेकिन नेशनल अवार्ड का मतलब 51 वर्ष के हो चुके मुकेश के लिए रिटायरमेंट तो कतई नहीं था। मुकेश विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे नए अभिनेताओं के लिए भी गा रहे थे। 70 का दशक भी मुकेश की गायकी का कायल रहा। कैसे बुलाए जा सकते हैं, धर्म कर्म का एक दिन बिक जाएगा गीत, फिल्म आनंद और अमर अकबर एंथनी के वो बेहतरीन नगमे। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के इस टाइटल सॉन्ग ने मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर मिला और इस गाने ने उनके करियर में फिर से एक नई जान फूंक दी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि राज कपूर के जिगरी यार मुकेश को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने, नासी की होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शुरुआत में राज कपूर की आवाज बने मुकेश, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस छवि से बाहर निकल मुकेश ने प्लेबैक सिंगिंग का एक नया इतिहास लिखा। 40 साल लंबी करियर में अपने दौर के हर सुपरस्टार के लिए मुकेश ने गाना गाया। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज बने। मुकेश की आवाज का जादू लोगों पर कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई। वो अपनी माँ से बोली कि अगर मुकेश आकर उसे अपना गाना सुनाए तो वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से इस बात का पता चलने पर मुकेश तुरंत उस लड़की से मिलने पहुँचे और गाना सुनाया।

एक बार मुकेश विदेश दौरे पर थे। उस समय देश के जाने माने संगीत निर्देशकों की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को एक गीत रिकॉर्ड करना था। उन्होंने सोचा कि मुकेश तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं, इसलिए फिलहाल किसी और से ही उस गीत को रिकॉर्ड करवाया जाए। तब उन्होंने उस गीत को मनहर उदास से रिकॉर्ड करवाया। जब मुकेश विदेश दौरे से लौटे तो कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें उस गाने को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में बुलाया। जब मनहर उदास का गाया हुआ गाना मुकेश ने सुना तो उन्होंने उस गीत को दोबारा गाने से मना कर दिया। हिंदी फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने जब अपनी फिल्म आग से शुरुआत की तो उस फिल्म में कुछ गीत मुकेश ने भी गाए। यहीं से राज कपूर और मुकेश में गहरी दोस्ती हो गई थी। राज कपूर खुद कहा करते थे कि शरीर वो है तो उनकी आवाज मुकेश है। जब राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए फिल्म बॉबी बना रहे थे तो राज कपूर चाहते थे कि इस फिल्म के गाने मुकेश गाए, लेकिन मुकेश ने उस फिल्म में गीत गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चिंटू की उम्र अभी बहुत कम है, उसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुकेश ने बताया कि वो एक गायक को जानते हैं जो इस फिल्म के गीत भली भांति गा सकता है। मुकेश ने राज कपूर को शैलेंद्र सिंह का नाम सुझाया। फिल्म के गीत शैलेंद्र सिंह ने गाए और हिट भी हुए। इसके लिए राज कपूर ने मुकेश की पारखी नजर की भी खूब तारीफ की।

एक कामयाब गायक होने के बावजूद मुकेश के बारे में लोगों की एक राय बन गई थी कि वो शास्त्रीय गीत नहीं गा सकते, लेकिन जब उन्होंने चंदन सा बदन, चंचल चितवन गाया तो शास्त्रीय गीतों पर उनकी बुराई करने वाले सभी लोगों का उन्होंने मुंह बंद कर दिया। मुकेश ने 200 से ज्यादा फिल्मों को अपनी आवाज दी। उन्होंने हर तरीके के गाने गाए, लेकिन उन्हें दर्द भरे गीतों से अधिक पहचान मिली। मुकेश ने अगर जिंदा हूँ मैं इस तरह से या मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा जैसे कई गीतों को अपनी आवाज दी। मुकेश फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उस समय वो गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुकेश ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमसे टकराती है, पल भर के लिए यादों की पोटली टटोलती है और गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

तो दोस्तों, ये था मुकेश जी के अनमोल गीतों और उनकी दिलचस्प कहानियों से भरा एक एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। मुकेश जी की गीतों में वो मैजिक है जो दिल को छू जाता है। उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए सिंगर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 5। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक मुकेश पर, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की

0: सुनिए और सुनाइए रेडियो हितसत्ता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 5। स्टूडियो में आए हुए मेहमान हैं प्रवीण वर्मा खिप्पल, आपसे बात करेंगे आरजे सेजल।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो 90.0 मेगाहर्ट्ज ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। मैं तुहाडी रेडियो सखी सेजल तुहाडा स्वागत करदी हां अज दे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी विच। अज गल्लां बातां ते शायरी दा सफर होएगा पंजाबी विच ही। हुन असी स्वागत करदे हां साडे अज दे मेहमान श्री प्रवीण वर्मा जी खिप्पल दा। सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी। मेरे वल्लों सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, सारे ही तुहाडे स्रोतियां नूं दिलों धन्नवाद।
2: हुण मैं चाहवांगी कि साडे जिहड़े सुनन वाले ने उहनां नूं तुसीं आप ही अपना छोटा जिहा परिचय दो।
3: मेरा नाम जिवें तुसीं दस्सिया है प्रवीण वर्मा खिप्पल। खिप्पल असल च मेरा तखल्लस है, ते तखल्लस किसे भी शायर लई, वैसे मैं अपने आप नूं शायर नहीं मानदा, पर फिर भी जिवें कहिंदे ने कि कोई कवि है शायर है उन्हें तखल्लस रखना जरूरी हुंदा है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 5। आज के मेहमान थे प्रवीण वर्मा खिप्पल। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

यो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन, अर अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन, अर मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक है ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

पालाकेंड का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर पुष्पा रैना से की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय है गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए।
2: डॉक्टर पुष्पा रैना हमारे साथ हैं। पुष्पा जी, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद किस तरह का एहतियात बरतना पड़ता है आम महिला को।
3: कोई भी शादीशुदा औरत जिसको बच्चा होता है उसको पहले डायग्नोस करना पड़ता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा उसको वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? जब उसको मंथली पीरियड बंद हो जाता है या उल्टी का मन करने लगता है तो उसको पहले किसी डॉक्टर के पास सलाह लेने चला जाना चाहिए कि कंफर्म करने के लिए वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। डॉक्टर को प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है। अर्लीस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट से ही पता चल सकता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है
2: जी।
3: उसके बाद 10-15 दिन के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मन खराब होना, उल्टी करना, सुस्ती जैसी हो जाती है। तो ये तो सिम्टम्स होते हैं और टेस्ट करने से पता चल जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है
2: जी।
3: तो अगर औरत प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास चली जाती है फिर डॉक्टर उसको बताता है कि क्या एहतियात प्रेगनेंसी में करनी पड़ती है
2: जी।
3: हम प्रेगनेंसी को 9 महीने होते हैं तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं
2: जी।
3: पहला चेकअप, हम बोलते हैं कि चेकअप करवाने के लिए औरत को कम से कम 9 महीने में 3 बार डॉक्टर के पास जरूरी जाना चाहिए। पहले 3 महीनों में वो डॉक्टर के पास किस लिए जाती है? एक तो अपना डायग्नोसिस करने के लिए जाती है, दूसरा फिर डॉक्टर उसको बताता है कि क्या क्या एहतियात करनी है उसको। एक तो उसको डॉक्टर डाइट के लिए बताता है कि डाइट कैसी लेनी है।
2: ये आप पहले 3 महीनों की
3: पहले 3 महीनों की बात कर रहे हैं।
2: ये बड़े क्रूशल होते हैं।
3: पहले 3 महीने क्रूशल होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती है। अगर प्रॉपर एहतियात नहीं लिया जाए तो वो प्रेगनेंसी गिरने का डर, जिसको अबॉर्शन करते हैं, अबॉर्शन का डर होता है
2: जी।
3: तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी तो वो उसको एहतियात बता देगा, कितनी देर रेस्ट करना, काम कैसे, कोई हैवी काम नहीं करना है, ज्यादा लंबा सफर नहीं करना है, डाइट कैसी लेनी है। और पहले चेकअप में पता चल जाता है कि औरत का खून काम तो नहीं है। कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे पता चलता है खून काम तो नहीं है। एक तो हमें जनरल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, अगर खून कम हो तो रंग पीला पड़ा होता है, नाखून जो होते हैं वो भी चपटे जैसे हुए होते हैं, जीभ का रंग पीला होता है। फिर खून टेस्ट करने पे, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसे पता चलता है कि औरत का खून कितना है, ग्रुप कौन सा है। और कुछ बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी में डेंजरस होती हैं।
2: किस किस तरह की बीमारियां?
3: जैसे जॉन्डिस होता है,
2: पीलिया
3: की बीमारी होती है, या अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट औरत को होंगी तो एक तो इफेक्ट औरत को भी करती है, उसकी हेल्थ को भी,
2: और जो बच्चा
3: पेट में पड़ रहा होता है उसको भी इफेक्ट करती है। कई बार उन बीमारियों से अबॉर्शन हो जाता है, अगर अबॉर्शन का समय निकल जाए, अब नॉर्मल बेबीज होते हैं या डेड बेबी पैदा होते हैं। तो ये टेस्ट हम पहले ही 3 महीनों में कर लेते हैं।
2: यानी आप ये मान के चलते हैं कि पहले जो 3 महीने होते हैं बड़े क्रूशल होते हैं।
3: एक तो डायग्नोसिस, दूसरा एहतियात की अबॉर्शन ना हो जाए, फिर मदर को कोई बीमारी ना हो, मदर को बच्चा पैदा करने के लिए भाई उतना खून बराबर होना चाहिए, फिर खून बराबर करने के लिए डाइट कैसी लेनी है, उसके बाद फिर यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और यूरिन में इन्फेक्शन होगी तो उससे भी अबॉर्शन होने का डर रहता है। तो हम कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे खून कितना है, ग्रुप क्या है, कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, जैसे आजकल नई बीमारी है एड्स जिसका तो प्रोफाइलेक्सिस है, और बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कोई नहीं है।
2: ये जब खून टेस्ट होता है तो वहाँ पता चलता है।
3: आजकल ये लेटेस्ट टेस्ट ये भी करते हैं, HIV टेस्ट बोलते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में कर लेते हैं, HIV कर लेते हैं, जॉन्डिस के लिए हेपेटाइटिस का टेस्ट कर लेते हैं, ये बेसिक टेस्ट होते हैं।
2: अच्छा पुष्पा जी, इस दौरान क्या कोई खास मेडिसिन लेनी पड़ती है या आहार किस तरह का लेना पड़ता है ये 3 महीने के दौरान?
3: मेडिसिन पहले 3 महीनों में उतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, जैसे किसी को उल्टियां आती हैं, मन खराब होता है, तो हम पहले डाइट के लिए बताते हैं पेशेंट को, हल्की फुल्की गुजा लेगा, फ्राइड चीजें नहीं लेगा, जो पचती हैं जैसे जूस है, ठंडा दूध है, दही है, ये वाली चीजें ले सकते हैं। अगर फिर भी उल्टियां बंद नहीं होती हैं तो फिर कुछ मेडिसिन होती हैं हम वो देते हैं पेशेंट को, और उससे भी वोमिटिंग कंट्रोल नहीं होती है, कई बार ड्रिप देने की।
2: ये कहाँ तक सच है कि कहते हैं कि 3 महीनों के दौरान कोई मेडिसिन ली नहीं जाती है, दी नहीं जाती है?
3: नहीं, ये तो सच नहीं है। कोई भी डिजीज हो और कोई पेशेंट को कोई बीमारी है, जैसे यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, कोई फीवर है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही दी जाती हैं, जो कि भी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करती।
2: कोई इसका असर बच्चे पे
3: मेडिसिन देते हैं? कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं बच्चे के लिए, वो मेडिसिन कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो अगर पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराने जाएगा, उनको पता होता है कौन सी मेडिसिन देनी है, तो फिर वही मेडिसिन देते हैं।
2: यहाँ हम आपसे ये जरूरी जानना चाहेंगे फिर से दोबारा कि 3 महीनों के अंदर अंदर एक तो एहतियात बरतने की बहुत जरूरत होती है। आपने कहा कि जिस तरह के टेस्ट होते हैं वो करवाने चाहिए, खासतौर पे जो ब्लड टेस्ट की बात,
3: ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये बेसिक टेस्ट है, ये करवाने चाहिए।
2: पुष्पा जी, हम यहाँ अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा विराम लेंगे। आपकी पसंद का कोई गाना जो आप अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे?
3: हमराज
2: फिल्म का गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो। बहुत ही प्यारा नगमा चुना है आपने महेंद्र कपूर की आवाज में। आपकी पसंद का गाना हम अपने सुनने वालों तक पहुंच

0: पुष्पा रैना हमारे साथ हैं। पुष्पा जी, अब जब 3 महीने की बात की है आपने कि 3 महीनों में किस तरह का एहतियात बरतना है, उसके बाद जो अगले 3 महीने होते हैं वो भी क्या क्रूशल होते हैं?
1: वो भी क्रूशल ही होते हैं, क्योंकि हम पहले तो असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या डाइट देनी है, और हमें उस पहली विजिट में ही पेशेंट को बता देते हैं नेक्स्ट विजिट क्यों ज़रूरी है, नेक्स्ट विजिट पर क्यों आना है। एक तो हम टैटनस ऐसी बीमारी है जिसको हम इंजेक्शन लगा के, 2 इंजेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान दे के टैटनस से औरत को और उसके होने वाले बच्चे को बचा सकते हैं, तो हम उसकी भी हिदायत देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं नेक्स्ट विजिट में वो आएगी तो टैटनस के 2 इंजेक्शन करवाने, 1 महीने पर, दूसरा उसके 1 महीने के बाद 2 इंजेक्शन लगने होते हैं पेशेंट को।
0: यानी एक तो हमने 3 महीनों का जिक्र किया है, उसके बाद जो 3 महीनों के बाद
1: बार विजिट पर आएगी पेशेंट तो हम वो बोलेगी कि मैंने क्यों आना है। एक तो हम चेकअप करते रहते हैं कि भाई वो प्रेगनेंसी ठीक से बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, उसका खून कम तो नहीं रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, तो साथ ही हम उसको टैटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, और साथ क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कोई भी हम डाइट दे दें तो वो प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती है, तो उसमें हम उनको आयरन टेबलेट देते हैं। ये 100 टिकियां देनी होती हैं हम 3 महीनों में, तो ये पहले 3 महीनों में नहीं देते हैं क्योंकि आयरन से उल्टियाँ होती हैं, कई बार मन खराब होता है, तो प्रेगनेंसी में ऐसे भी पहले 3 महीनों में उल्टियाँ होती हैं, तो हम पेशेंट को नेक्स्ट 3 महीने में बुलाते हैं कि हम उनको आयरन टेबलेट दे सकें जिससे उनका खून कम ना हो सके।
0: इसके अलावा उनको
1: आहार, फिर दोबारा आहार बताते हैं उनको कि भाई जैसे आप प्रेगनेंसी के लिए डबल डाइट लेनी है उनको, अगर वो 1 कटोरी दाल खाती हैं तो उनको प्रोटीन ज़्यादा लेनी है तो 2 कटोरी दाल ले लें, दूध एक्स्ट्रा ले लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, प्रोटीन मतलब मिनरल ज़्यादा होते हैं वो डाइट लें, जो नॉन वेजिटेरियन औरतें होती हैं उनके लिए मीट ले लें, मछली ले लें, वेजिटेरियन पनीर ले लें, सोयाबीन ले लें, काले चने ले लें, साबुत मूंगी, धुली मूंगी, काले चने और साबुत मूंगी को अगर वो भिगो के रखें तो उसमें से अंगूर आ जाते हैं, उसमें विटामिन सी मिलती है, तो खून बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ हम पेशेंट को डाइट के बारे में भी बताते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाना जरूरी होता है
0: जी
1: हर विजिट पे
0: जी,
1: क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी से पहले है तो प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाता है, तो कई बार क्या होता है उनको पेशेंट को दौरे पड़ने का डर होता है, तो ये दौरे 6 महीने के बाद पड़ते हैं, तो अब जब सेकंड विजिट पर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ऑलरेडी इन्वाइट कर लेते हैं 3rd विजिट के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो लास्ट के 3 महीनों में होती हैं, जैसे अभी हमें पता चलता है बच्चा सीधा है या उल्टा है वो लास्ट के 3 महीनों में पता चलता है, फिर ब्लड प्रेशर, अगर किसी का पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें पहले पेशेंट को सिर दर्द होती है, पाँव हाथ पाँव में सूजन होती है, मुंह पर सूजन होती है, तो उसके बाद पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो दौरे पड़ने का डर होता है।
0: ये 3 से 6 महीने
1: के लास्ट के 3 महीने,
0: लास्ट के 3 महीने,
1: तो हम दूसरे 3 महीनों में, जैसे पहले 3 महीनों में हम प्रेगनेंसी डायग्नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं, दूसरे तीन महीनों में, जैसे 3 से 6 महीनों में टैटनस इम्यूनाइजेशन करते हैं, उनको आयरन टेबलेट देते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं, रेस्ट के लिए बताते हैं कितना रेस्ट करना है, किसी का स्टैंडिंग प्रोफेशन है तो हम बोलते हैं कि ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है।
0: अच्छा, ये जो गाँव में महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, ये जो 3 से 6 के बीच में जो
1: 3 से 6 महीने के बीच में भी हम उनको बोलते हैं, जैसे वो काम शाम कर लेती हैं,
0: यानी अगर अगर वो
1: टाइम होता है,
0: अगर वो अस्पताल तक ना पहुंच, अगर वो डॉक्टर से ना मिले, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए,
1: अगर वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए, तो आप गवर्नमेंट ने यहाँ स्टार्ट किया है नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ प्रोग्राम, उसमें क्या है जगह जगह उन्होंने अब ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं जिसमें एक ANM होती है,

0: स्टाफ नर्स होती है ट्रेंड, मेडिकल ऑफिसर होता है, तो वो उनको सब एहतियात के बारे में, ब्लड प्रेशर चेकअप करना, खून टेस्ट करना,
1: कोई घरेलू इस तरह के
0: और
1: नुस्खे इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं?
0: घरेलू नुस्खे डाइट के लिए ही है। जैसे अब आयरन है तो अब किस डाइट में वो ज्यादा होता है, जैसे गुड़ में ज्यादा होता है आयरन, जो साग होता है घर में, अब
1: जी
0: हरे पत्ते वाली सब्जी तो बहुत होती है, तो वो यूज कर सकती हैं उसके लिए। तो दालें तो अब हर आदमी दाल खाता है, और जैसे मूंगी की दाल हो गई, काले चने हो गए, इनमें प्रोटीन ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा खा सकते हैं। जैसे गज्जक होती है गांव में, जैसे
1: जी
0: अब उसमें गुड़ और चना दोनों मिक्स
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: एक में आयरन होता है तो चढ़े में प्रोटीन होगी। जैसे आपने आशा वर्कर ली है,
1: जी
0: आशा वर्कर ली है, उनको गवर्नमेंट 600 रुपया देती है, वो अपने नजदीक के ही घरों में पता करती है कौन औरत प्रेग्नेंट है, उसको वो रजिस्ट्रेशन कर लेती है, वो खुद उनको डॉक्टर के पास पहुंचाती है, मिनिमम 3 विजिट करवाती है उनको।
1: पुष्पा जी ये बताइए हमें कि जो आखिरी 3 महीने होते हैं यानी 6 से 9 महीने के दौरान, इसमें किस तरह के एहतियात बरतना पड़ता है?
0: जो लास्ट के 3 महीने
1: ये
0: वो
1: भी मेरे
0: है,
1: ख्याल में क्रुशल
0: पहले
1: होते हैं क्या?
0: वे ये भी क्रूशियल होते हैं। पहले जैसे जो एहतियात पहले 3 महीनों में है, जैसे रेस्ट की एहतियात है, डाइट की है, जो आयरन टेबलेट लेनी है, ब्लड टेस्ट कराना है कि खून कम तो नहीं हो रहा है, फिर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना है, कोई और बीमारी तो नहीं है, ये भी चेकअप होता है लास्ट के 3 महीनों में। उसके अलावा बच्चा सीधा है, उल्टा है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, टेढ़ा है, इसकी डिलीवरी घर में हो सकती है या नज़दीक के कहीं हेल्थ सेंटर में हो सकती है या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकती है,
1: अच्छा, अगर
0: ये
1: महिला
0: भी डिसाइड करना पड़ता है 3 महीनों में।
1: अगर महिला को पता चलता है कि मेरे 2 बच्चे अंदर पल रहे हैं, इस तरह की बातें, उस कोई किस कोई
0: कई
1: संकेत
0: बार
1: मिलता है क्या?
0: हाँ मिल जाता है, जैसे अगर पहले 3 महीने होते हैं उनको उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं, फिर क्या होता है कि जितना पेशेंट का टाइम होता है उससे पेट उनका बढ़ रहा होता है, वो बोलती है मेरे को 3 महीने पर पेट बहुत बड़ा है, तो उनको भी पता चलता है कि हमारा पेट बढ़ रहा है, पर हमें डॉक्टर के पास अगर वो जाएंगी वो कंफर्म करता है कि भाई ये 2 बच्चों की वजह से है या रसोली की वजह से तो नहीं बढ़ रहा है, या कई बार पेट में एबनॉर्मलिटी होती है, पेट में पानी बढ़ रहा होता है, बच्चा कोई एबनॉर्मल होता है, कई बच्चों को सिर नहीं होता है या सिर में पानी होता है या गुर्दे खराब होते हैं, उस सूरत में क्या होता है कि जितना टाइम होता है उससे पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो डॉक्टर के पास जाती है तो कन्फर्मेशन हो जाती है उनकी
1: यानी
0: कि
1: आपने
0: दो
1: बताया
0: बच्चे
1: कि
0: हैं या कोई और प्रॉब्लम है।
1: यानी ये आपने बताया कि 9 महीने जो लास्ट के 6 और 3 महीने के बीच में समय होता है, ये भी क्रुशल होता
0: ये
1: है।
0: भी क्रूशियल होता
1: तो एहतियात बरतने की
0: है,
1: बहुत
0: एहतियात
1: ज़रूरत
0: बरतनी
1: होती है
0: जरूरत है।
1: और डॉक्टर से मिलना है।
0: हाँ, और उसको डिसाइड करना होता है 3 महीनों में कि वो उसको डिलीवरी के लिए घर में बैठना है, किसी नर्स से डिलीवरी करानी है, डॉक्टर से करानी है, या कहीं ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको जिस हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर पहुंचेगी वो लेट हो जाएगा उसको, जब अगर उसको डिलीवरी घर में नहीं होगी और उसको पता नहीं होगा कि बच्चा उल्टा है, सीधा है, टेढ़ा है, 2 बच्चे हैं, तो वो घर में ट्राई करती रहेगी, तो फिर जब पहुंचेगी तो माँ की और बच्चे की जान दोनों को खतरा होता है।
1: डॉक्टर पुष्पा, यहाँ पे आपकी पसंद का एक और गाना हम सुनना चाहेंगे और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे।
0: ये मैं अपनी बहनों को दुलारी पसंद
1: दुलारी
0: करूंगी।
1: फिल्म से गाना रफी साहब की आवाज में है, बड़ा प्यारा गाना है, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगी।
0: शायद बहनों को भी ये पसंद
1: जी
0: आएगा।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर पुष्पा रैना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह की एहतियात करनी पड़ती है, खासतौर पे बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए?
1: जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा, उसकी पहले, सबसे पहले उसकी सांस का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम डिलीवरी करते हैं तो हम बोलते हैं कि बच्चा एकदम सांस लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की मौत के तीन काज होते हैं। एक तो सांस ना लेने की वजह से इमीडिएटली ऑक्सीजन ना जाए, उसे बच्चा मरता है। दूसरा है कि टेम्परेचर कम होने से, जैसे सर्दियां हैं तो अगर हम बच्चे को गर्म नहीं रखें उसकी वजह से बच्चा मर जाता है, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, टेम्परेचर कम होने से बच्चा मरता है। तीसरा, हमें बच्चे की खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। पहले लोग बोलते थे कि बच्चा पैदा होने के भाई 6 घंटे बाद दूध पिलाना, 12 घंटे के बाद दूध पिलाना, आजकल हम बोलते हैं कि इमीडिएटली बच्चे को दूध न्यूट्रिशन देनी है,
0: और माँ का
1: बच्चा
0: दूध
1: होने
0: पिलाना
1: के
0: है,
1: बाद हाँ
0: माँ का दूध
1: दूध
0: पिलाना
1: पिलाना, और माँ का ही दूध ज़्यादा सबसे अच्छा दूध माँ का ही होता है। एक तो ये रेडीमेड होता है, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं होता है, और उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को कोई बीमारियों से बचाते हैं, कोई इन्फेक्शन से बचाते हैं। और तीसरा ये है, कोई इसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है,
0: जी।
1: तो हर टाइम प्रॉपर टेम्परेचर पर मिलता है, सही मात्रा में जितना बच्चे को चाहिए होता है उतना दूध, बच्चे को दूध से इन्फेक्शन नहीं होती है। जैसे अगर बोतल का दूध पिलाएंगे तो बोतल अगर बाहर नहीं की होगी, इन्फेक्शन होने का डर है।
0: बच्चे
1: फिर
0: को एकदम
1: अगर
0: से नहलाना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है?
1: टेम्परेचर, हम बोलते हैं कि जब, जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है वो ऐसे टेम्परेचर पर होता है, गर्म होता है बच्चा, बाहर के टेम्परेचर से माँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर जब बच्चा बाहर निकलता है तो हम बोलते हैं कि उतने कमरे में, गर्म कमरे में रखना चाहिए कि नॉर्मल आदमी को पसीना आए, तो हमें बच्चे को इमिडिएटली नहाना नहीं चाहिए।
0: जी,
1: हम बोलते हैं कि 1 वीक तक, कम से
0: नहला,
1: कम
0: बच्चे
1: 1 वीक
0: को
1: तक बच्चे को
0: नहलाना नहीं
1: नहलाना नहीं
0: चाहिए।
1: चाहिए,
0: जी
1: बच्चे को गर्म रखना चाहिए। सर्दी से एकदम बच्चे को निमोनिया होने का डर रहता है, तो जो बच्चे की डेथ होती है, बच्चे जो 7 दिन के अंदर अंदर मरते हैं, एक तो ये टेम्परेचर कम होने की वजह से मरते हैं, दूसरा पैदा होते टाइम अगर उनके मुंह में कोई पानी वानी चला जाता है, गंद चला जाता है, सांस नहीं ले सकते हैं, उस वजह से मरते हैं, और तीसरा अगर दूध नहीं पीते हैं तो खुराक की वजह से, चौथा इन्फेक्शन से। ये चार चीज़ें जिनकी वजह से बच्चे की डेथ होती है।
0: अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो इमिजिएटली किस तरह का वैक्सीन दिया जाता है
1: जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम हम
0: उसके?
1: बोलते हैं 1 वीक के अंदर अंदर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है, जो हर न्यू बॉर्न को लग सकती है किसी टाइम, क्योंकि ये जरासीम हवा में होते हैं, तो न्यू बॉर्न को कभी भी ये इन्फेक्शन का डर रहता है। तो हम जब बोलते हैं कि बर्थ से लेकर वीक के अंदर अंदर कभी भी इम्यूनाइजेशन हो जानी चाहिए,
0: जी,
1: चाहे बर्थ के इमिजिएटली सेम डे ही हो जाए। तो ये जब डिलीवरी होती है तो हम कोशिश करते हैं, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो तो हम बोलते हैं कि BCG वैक्सीनेशन उसी टाइम लग जानी चाहिए,
0: जी
1: तो ये इमीडिएट वैक्सीनेशन है। उसके बाद फिर बोलते हैं हम पोलियो के 5 जानलेवा
0: जी
1: बीमारियां
0: जी जी
1: जिनकी वैक्सीनेशन लगती है, तो मदर को उनके बारे में हम पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान ही बता देते हैं कि भाई डिलीवरी के बाद बच्चे को इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ इम्यूनाइजेशन या ये वैक्सीनेशन करानी होती है। एक तो पोलियो है,
0: पोलियो ड्रॉप्स
1: पोलियो
0: पिलवानी है?
1: ड्रॉप्स पिलाते हैं।
0: जी।
1: दूसरा उसके बाद है काली खांसी है,
0: जी
1: फिर गलघोंटू की बीमारी है और टेटनस है। ये 5 है, तो एक तो BCG बर्थ पे लग जाता है, फिर पोलियो की बूंदें भी पिला देते हैं,
0: जी
1: उसके बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर ये, फिर हम DPT इंजेक्शन बोलते हैं इसको, उसमें 3 इंजेक्शन होते हैं, डिप्थीरिया, गलघोंटू बीमारी होती है। अगर ये हो जाती है तो उसमें मॉर्टेलिटी बड़ी होती है, बहुत बच्चे मरते हैं, इलाज कम होता है, तो हम इसको बचाने से पहले ही इंजेक्शन लगा देते हैं कि बच्चों को हो नहीं जाए। फिर जो DPT इंजेक्शन है उसमें पर्टुसिस होता है, काली खांसी का वैक्सीन होता है और टेटनस का वैक्सीन होता है, तो ये 3 है, 1-1 महीने के अंतर पे देते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने पर मीजल्स का, फिर उसके बाद मम्स का देते हैं, कई बार आप वो रुबेला का वैक्सीन भी देते हैं, उसको बोलते हैं MMR, मीजल, मम्स, रुबेला, ये 3 का वैक्सीन है, ये
0: ये
1: वैक्सीन
0: एक
1: देते
0: साल
1: हैं,
0: तक दिए जाते हैं?
1: ये 1 साल तक दिए जाते हैं। फिर बूस्टर डोज 1.5 साल के बाद मिलती है। फिर स्कूल गोइंग एज पे टेटनस इम्यूनाइजेशन, जो DPT है उसमें, क्योंकि ये हम बोलते हैं जो
0: ये पोलियो,
1: डिप्थीरिया,
0: पोलियो की ड्रॉप्स जो होती है पिलवानी पड़ती है, साल में कितनी बार पिलवानी पड़ती
1: ये
0: है?
1: हम ऐसे तो 3 डोजेज हैं पोलियो के, 3 डोजेज हैं, और उसके बाद बूस्टर डोजेज, जैसे ये आप अनाउंस करते रहते हैं कि भाई
0: जी,
1: दिसंबर और जनवरी में ये पिलाते हैं, वो इनके अलावा 5 साल के बच्चों को कभी भी पिला सकते हैं। तो ऐसे मिनिमम 3 डोजेज होती हैं इसकी, ये 1-1 महीने के अंतर पे देते हैं, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता हो तब स्टार्ट करते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर पुष्पा, हम आखिरी हिस्से में आए हैं इस कार्यक्रम में, ये बताइए प्रसव यानी अगली प्रेगनेंसी
1: हाँ,
0: के बीच में कितना फासला होना चाहिए?
1: हम बोलते हैं मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए ताकि मदर की हेल्थ भी ठीक हो जाए और वो पहले बच्चे को लुक आफ्टर कर सके अच्छी तरह से। तो पहला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो दूसरा बच्चा पैदा करे। अगर एक साथ साथ ही बच्चे होते जाएं, एक बच्चा 1 साल का दूसरा बच्चा, वो अभी पहली वीकनेस से ही उभरी नहीं होती है, एक बच्चे को भी लुक आफ्टर नहीं कर सकती है, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर ना अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है, ना जो बच्चा पहले है उसका ख्याल रख सकती है, और जो पेट में पल रहा होता है ना उसको अच्छी खुराक मिल सकती है।
0: और आपका ये भी संदेश होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार,
1: सुखी परिवार,
0: हम दो हमारे दो,
1: हमारे दो।
0: डॉक्टर पुष्पा, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: अब ये आखिरी गाना है पाकीज़ा फिल्म का,
0: पाकीज़ा फिल्म से। चलिए पुष्पा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का गाना भी सुनिए, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: चांद के पार चले। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा रैना से की गई बातचीत। बातचीत का विषय था गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगो से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगो से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ
2: 90.0 ਮੈਗਾ

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: You are listening FM 90.0 MHz, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। कभी 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
2: अयो नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
1: राम, यहां। कुछ पियोगे?
2: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
1: नहीं, सोमरस।
2: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे, दारू की बात कर रही थी। किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
1: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
2: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: Somra kakalar to Coca Cola ke jaisa. Maharaj,
1: bolo.
0: Ek baat yaad aa gayi Maharaj mere.
1: Poocho.
0: Wo hamare niche ye peene ke liye kahin permit hai kahin permit nahi hai. यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं. ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो.
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज.
1: बोलो.
0: इधर आओ. मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ. अच्छा.
0: एक पोटी थी.
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी.
1: अच्छा.
0: उसका नाम था चुनिया.
1: सुनिया.
0: हो, आजकल के जमाने की वो छोकरी थी. उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई. अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा.
1: शाबाश. तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है.
2: चुनिया, अरे किधर है रे?

আজি ঘাসলে ডাল কো ফুক ডালো

0: जय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, और आप सुन रहे हैं हमारे प्रसारण हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। विडम्बना की बात है कि हमारी जो बिजली डिपार्टमेंट है, पिछले 2 दिन से वशिष्ठ नगर में सुबह 10 बजे लाइट जाती है, और कल भी 7 बजे आई और अभी भी सुबह से लाइट नहीं है। जबकि हरियाणा में, खास करके अंबाला में, लाइट ऑफ हो ही नहीं जाती। अधिकारी को ये देखना पड़ेगा कि 2 दिन से आप कम से कम सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे लाइट ऑफ करते हैं, कोई बीमार है। और इतना सारा हर एक घर में जो किसी बीमार के लिए कोई उपकरण है या फ्रिज है, 2 दिन से सबके परिवारों के फ्रिज बंद है, कितना नुकसान हो रहा है, ना कोई जानकारी है ना कोई रीजन है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट करनी है, तारें बदलनी है, तो इस तरीके से किया जाए कि अगर आपने आज एक पूरे दिन के लिए लाइट को ऑफ किया है, तो दूसरे दिन पूरे दिन लाइट ऑफ ना करके 2 दिन या 3 दिन के बाद किया जा सकता है, ताकि लोग अपना अरेंजमेंट करें या पहले से कोई जानकारी हो। और बहुत अफसोस की बात है कि कल भी हमारा जो प्रसारण है, हमारे पास लाइट तो कभी जाती नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास 6 घंटे का बैकअप है इस सामुदायिक रेडियो को चलाने के लिए। हमारे प्रसारण कल भी जारी थे, आज भी जारी है। आप मोबाइल पर हमारे प्रसारण कल भी सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं, और इस समय भी प्रसारण जारी है। पर अफसोस ये है कि जब हम फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण देते हैं, तो उसका कंटिन्यूअस जो लाइट है उसकी जरूरत है, उसके लिए बैकअप जो है वो इतना यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां कभी लाइट जाती ही नहीं है। तो हम आप सभी श्रोताओं से बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट की ओर से बिजली ना होने की वजह से हमारे प्रसारण केवल मोबाइल पर आप सुन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इन बातों के लिए हम इन अधिकारियों से बात करेंगे, क्या तरीका है, किस तरीके से है। जैसे हमारे यहां पर सड़कें बनी, वो भी बेतरतीब तरीके से बनी, कोई उसमें कोई तरतीब नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, जबकि सीमेंट के रोड बनने के बाद उस पर लुक डाली गई, ये पहली बार हम सब ने देखा और सुना। हम आपसे एक बार फिर क्षमा चाहेंगे, जैसे ही लाइट हमारे पास दोबारा आएगी आज के लिए, तभी हम फ्रीक्वेंसी पर अपना प्रसारण और जारी रखेंगे। फिलहाल आप हमारे प्रसारण को मोबाइल ऐप के थ्रू radiovitasta.com से, हमारी वेबसाइट से सुन सकते हैं, या webplayer.radiovitasta.com से आप सुबह से सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप भी कोई बात कहना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और हमें भेजें, हम उसको भी प्रसारित करेंगे इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से। खास करके दयालबाग और वशिष्ठ नगर के इलाके में पिछले 2 दिन से बिजली डिपार्टमेंट ने लाइट ऑफ करके रखी हुई है, इसलिए क्योंकि वो तारें बदल रही है। तो केवल और केवल 2 दिन 3 दिन के लिए आप लाइटें बंद करेंगे। कोई बीमार है, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो किस तरीके से आगे चले, आप अपनी जानकारी हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। धन्यवाद।
1: जिंदगी का उठाई दिन न जवानी नल चल दी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं, ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है। भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में बड़े ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप

0: सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं? कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें,

देखिए मौसम खजां के आते आते फिर रिश्ते जोड़े, तुम्हारे उदास चेहरे की तस्वीर खींची, घर की कच्ची दीवार पे सजाई, टपकती बारिश की बूंदों से बचा के रखा, तेज हवाओं के झोंकों से महफूज रखने की कोशिश भी की। सुना है तस्वीरें अक्सर बोलती हैं, काश ये तस्वीर आज मेरे लिए बोल।

तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।